0: परम दिव्यं गांगेयं निर्मलं जलम आच्छन्यमया दत्तं गृहान परमेश्वरम ओम वनस्पतिर सो भूतो गंधा ज्योति नरोत्तम आग्रह सर्वदेवानां रूपोयम प्रतिग्रयता.
1: That's all, lift our hands. Om Namo Bhagavate.

बोले श्री सत्य सनातन धर्म की जय। सो डियर डिवोटी सीताराम एंड वेलकम टू रेडियो जागृति 102.7 FM। दिस मॉर्निंग वी हैव अ वेरी वंडरफुल टॉपिक, अ वेरी वेरी वंडरफुल टॉपिक दैट यू एंड आई इज फुली अवेयर ऑफ। सो पूजा विधि इज important for us to understand. We do not have puja vidhi when we perform puja on the bedi, but puja vidhi is done and experienced in our mandirs. So when we return after this bhajan dedicated to Bhagwan Shri Ganesh, who is going to inspire us, who is going to bestow blessings upon us, we will return to this morning's discourse on puja vidhi. Jai Shri Ram.

तरी संभालो ओ मरी मैया, आज इथे सारेच पेंद्या आणि कन्हैया। हे लूट ही लेंगे माखन की कगरिया, आज बच न पाए कोई राह डगरिया।